0: तीन
1: अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफा करता है, इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो खुदा ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे आमाल उनको भले दिखाई देते हैं और खुदा काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke din mein.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में आपके मेज़बान थे जीन अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मुनफरिद है। हम जावेदा जिंदगी में तो अमूमन ही मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं, जो माशरती भी होते हैं, नफसियाती भी होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ज़रा हटके है। आज के दौर में आप सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो क्या वो चीज़ें हमारी ही बोया हुआ होता है, जो हमारा फिर वो पौधा बन के सामने आ रहा होता है, क्या वो कारमा होता है? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर डॉक्टर इरफान अली फानी। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम तहसीन, कैसी हैं आप? ठीक
2: सर? मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि डू यू बिलीव ऑन कारमा?
3: कारमा का जो ताल्लुक है ना जी, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, मैं इस पे यकीन करूं या ना करूं, लेकिन कारमा एक ऐसी हकीकत है जो हम हर रोज़ आते जाते, सोते जागते, पहनते बोलते, हर वक्त हम इसको महसूस कर रहे होते हैं। जो ये कायनात और ये जो दुनिया है ना तहज़ीन, ये असबाब और नताइज की दुनिया है। मतलब हमारे आज हम जो भी हैं, इसके पीछे एक पूरे मुख्तलिफ इसकी कॉजेज हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, तहज़ीन ऐसी क्यों है, उसकी कुछ कॉजेज हैं। हम जो भी आज एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बन के दुनिया के सामने हैं, किसी भी शक्ल में, अच्छे या बुरे, वो हमारे पीछे जो हम माजी गुजार चुके हैं, ये उसका नतीजा है। आज हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो है ये हम फेस कर रहे हैं, इसके कुछ असबाब हैं और उस असबाब का नतीजा क्या है, क्लाइमेट चेंज है। दुनिया में हम कहते हैं क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उसके कुछ असबाब हैं, उसकी वजह से क्राइम दुनिया में बढ़ रहा है। हम कहते हैं दुनिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तशद्दुद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अदम बर्दाश्त दिन ब दिन पाकिस्तानी मुआशरे में कम हो रही है, ये नतीजा है। और लेकिन इस नतीजे के कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ असबाब हैं। हमारे साथ तहज़ीन ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी सोच से, हमारी नियत से और हमारे अमल के साथ कनेक्टेड होता है। हम आमतौर पर कर्मा को लेते हैं कि ये जो कर्म है ना, ये शायद हम अमूमन वीडियोस में देखते हैं कि एक बंदा दूसरे को धक्का देने लगता है, धक्का देते देते खुद गिर जाता है, तो वो लिख देते हैं जी देखे ना कर्मा अपना काम कर गया, कि इसने दूसरे के लिए गड़ा खोदने की कोशिश की थी, खुद उसके अंदर गिर गया। तो हम कर्मा को आमतौर पर नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन कर्मा हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। कर्मा जो है बुनियादी तौर पर ना तो रिवॉर्ड है और ना ही ये पनिशमेंट है, ना ही ये पॉजिटिव है सिर्फ और ना ही ये सिर्फ नेगेटिव है। कर्मा बुनियादी तौर पर कॉज और अफेक्ट है, कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, उसकी कुछ कॉजेज हैं। जो हमारे इस वक्त सामईन इस वक्त हमको सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो आज घर से कोई उनमें से निकला हो, घर में निकलते हुए उसकी घर में अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मुलाजम के साथ कोई झड़प हो गई हो, झड़प के नतीजे में उसके जहन के अंदर वो गुस्सा रह गया हो, सड़क पे आते आते आगे ट्रैफिक ब्लॉक थी और वो जो गुस्सा घर से लेके साथ साथ आ रहा था, क्योंकि गुस्सा एक बोझ होता है और वो हम उसको कंधे पे उठाए फिरते हैं, जब तक हम रिलीफ उससे नहीं हासिल कर सकते, जब तक वो बोझ मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल दूंगा, लिहाजा मुझे उस गुस्से को निकालने के लिए कोई जगह चाहिए ताकि मैं रिलीफ में आ सकूं, मैं आज़ाद हो सकूं उस बोझ से। तो वो शख्स रोड पे आया और रोड पे आके ट्रैफिक ब्लॉक है और ब्लॉक के नतीजे में उसने गाड़ी किसी और गाड़ी में ठोक दी और उस गाड़ी से भी बंदा बाहर निकला, दोनों आपस में हाथापाई करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है, बीच में ट्रैफिक वार्डन आ जाता है, वो आके उनको बताता है कि भाई तुम्हारी गलती थी या किसकी गलती थी, उनके ऊपर इंडेमनिटी पड़ जाती है या उनको कोई ना कोई वहां पे जुर्माना पड़ जाता है। अब ये बात कहां से शुरू हुई थी, जब घर से निकलते हुए उसके कपड़ों पर चाय गिर गई हो गई, बच्चे ने उसके कपड़े गंदे कर दिए होंगे, वॉमिटिंग हो गई, उजलत के अंदर गुस्सा उसके साथ साथ चल रहा था और अल्टीमेटली उसने ये नतीजा उसको दे दिया। तो कर्मा का जो अल्टीमेट पर्पस है ना, या कर्मा का जो फिलॉसफी है, ये बेसिकली एक फलसफियाना तसव्वुर है। फिलॉसफी का यह जो तसव्वुर है ये संस्कृत से हमारे पास आता है। संस्कृत की जो लैंग्वेज है उसमें कर का लफ्ज है, कर का मतलब काम, ठीक है, कर से कर्मा बना कि मतलब हर वो काम जो आप करते हो, हर जो सोच जो आप सोचते हो, हर वो नियत जो आप कर लेते हो, वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, उसने अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, ठीक है। लाइक मैंने घर से जब ये सोच के निकलूंगा ना कि आज आके मैंने ये काम करना है, अगर तो वो गलत काम होगा तो मेरे गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी का दायरा बन जाएगा, ठीक है, और अगर वो कोई अच्छा काम होगा तो मेरे गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी का दायरा बन जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप एक कंकर पानी में फेंकते हैं और कंकर के गिर्द दायरे बनना शुरू हो जाते हैं वेव्स की शक्ल में, तो मेरी सिर्फ अमल ही लोगों के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, मेरी सोच भी, जो मैंने अगर कुछ गलत सोचा भी है या अच्छा सोचा भी है, उसकी भी वाइब्स लेयर्स की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में निकलेंगी। हम हर रोज अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो हमें ऐसे ही अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं, जिनसे मिलके हम एक बड़ा कंफर्ट फील करते हैं और एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हम फील करते हैं, और कुछ लोगों के सर्कल में आते ही हम जो है अपने ऊपर एक बर्डन सा, जैसे हम किसी साये के हिसार में आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम इस बोझ से आजाद हो जाए। अब वो जो दायरा है वो असल में मेरी सोच, मेरी नीयत और मेरे अमाल का दायरा है। मैं हर वक्त क्या क्या सोचता हूँ, देखो किसी ने कहा था, ड्रीम्स आर द टच स्टोन्स ऑफ योर थॉट्स। ख्वाब कुछ भी नहीं होते, ख्वाब आपकी सोचों की कसवटी होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी सोचें अच्छी हैं या बुरी हैं, ये देखो कि आपको ख्वाब कैसे आते हैं। अगर तो मनफी गलत ख्वाब आपको आते हैं, वो ख्वाब अल्टीमेट पैमाना है ये जानने का कि आपके जहन में हर वक्त क्या चलता रहता है। और अगर आपको ख्वाब आते हैं बड़े अच्छे रूहानी किस्म के, जिसके अंदर आप कभी मुकद्दस मुकामात का सफ़र कर रही हैं, कभी आसमान पे उड़ रही हैं, कभी आप इंतहाई मुअत्तर और साफ शफाफ पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियों में खुद आप तैर रहे हो, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे बताती हैं कि मैं उन अय्याम के अंदर किस तरह की पाकीज़ा शफाफ उलझी और धुली हुई सोचों को अपने जहन में रखता रहा हूँ। लिहाजा मैं क्या हूँ, मुझसे मिलने वाले हर शख्स का जो इम्प्रेशन मेरे हवाले से बनेगा, वो उस इम्प्रेशन के अंदर कोई 80-90% चीज़ जो है वो मेरे उस पूरे बचपन से लेके आज तक, वो सारी की सारी सोचें, वो सारी की सारी नीयतें, वो सारे के सारे आमाल कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करेंगे, जिस कंट्रीब्यूशन के तहत, अब देखो हम अमूमन क्लास में जब जाते हैं तो जाते ही क्लास में किसी बंदे के आने की वजह से पूरी क्लास में एनर्जी आ जाती है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं और कुछ टीचर्स आते ही तो बच्चों के ऊपर अफसुर्दगी या कह लो कि नींद तारी होना, गनूदगी तारी होना शुरू हो जाती है। अब ये शख्सियत अपने अंदर से वो एनर्जी निकाल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिवली कुछ लोगों को मिल के ही आप जोश में आ जाते हो, ठीक है, और आपके अंदर एक एनर्जी आप फील करते हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और कुछ लोगों को देखते ही आप डल हो जाते हो, ठीक है, आपके ऊपर एक खास किस्म का दबाव और प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर कर्मे का ताल्लुक सिर्फ एक्शन के साथ नहीं है। वी ऑल आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द कर्मा, जिसके अंदर आपकी सोच भी आती है, आपकी नीयतें भी आती हैं और आपके अमाल भी आते हैं।
2: واو سر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، ہم اس پہ اور بھی بات کریں گے کہ فلسفیوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، رائٹرز نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور ہم کچھ اپنے ڈیلی ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے اپنے آڈینس کے ساتھ. پر یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ پروگرام جاویدہ زندگی میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر، ہم لاسٹ لنک میں بات کر رہے تھے، آپ نے ایک جملہ بولا کہ جب ہمارے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کارما کا نتیجہ ہے، تو ہم کیوں صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نیگیٹو ہو رہا ہے وہی کارما کا نتیجہ ہے؟ ہم کیوں، کیا ہم اتنے زیادہ نیگیٹو ہیں، ہمارے سراؤنڈنگس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں پہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ کارما ہے؟
2: بڑا مزے کا کوسچن ہے آپ کا۔ آپ اپنے گھر سے نکلو اور روڈ پہ چلتی ہوئی ٹریفک کو انالیسس اس کا کرو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی پازیٹیوٹی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کسی کراؤڈ میں چلے جاؤ جہاں پہ گیدرنگ ہے لوگوں کی، جہاں 10 لوگ بیٹھے ہیں آپ ذرا ان کی باتیں جا کے سن لو، جہاں 10 اسٹوڈینٹس کھڑے ہیں ان کی آپ جا کے باتیں سن لو، کہیں سے بھی آپ کو کوئی پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ تو الٹیمیٹلی جو آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر اتنے لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہوں گے، نیگیٹو کر رہے ہوں گے، تو وہاں پہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ آج ہر دوسرا اسٹوڈنٹ جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ مایوس کیوں ہے، آج کی نوجوان نسل کی آنکھوں کے اندر اداسی کیوں ہے، کیوں یہ لوگ حبس زدہ گھٹن زدہ معاشرہ چھوڑ کر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ گزشتہ 2 سالوں کے اندر کوئی 20 لاکھ نوجوان جو ہیں یہ آپ کا ملک چھوڑ کر ان آزاد فضاؤں میں جا رہے ہیں، اس آزاد ملک کو چھوڑ کے۔ ہم نے سیاسی طور پر تو آزادی حاصل کی ہوئی ہے، ہم نے قانونی طور پر آزادی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کی ماحولیاتی آزادی ہے کہ میں ایک کھلے میدان میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو مقید محسوس کر رہا ہوں، تو بنیادی طور پر یہ جو کرم ہوتے ہیں نا، یہ کرم کارما سے ہی نکلا ہے کرم، یہ بیجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آج ہی اچھا کام کیا ہے تو ہمارے ساتھ فوراً سے اچھائی ہو جانی چاہیے، کوئی برا کرے گا تو فوراً اس کے ساتھ برائی ہو جائے گی۔ ہم کبھی بھی جب بیج کو بوتے ہیں تو فوراً سے اس میں سے درخت نہیں نکلتا ہے۔ جس طریقے سے آج بیجا ہوا جو بیج ہے وہ ایک خاص عمر کے بعد طوفانوں سے، موسموں سے لڑتے ہوئے باہر نکلے گا، اور باہر نکل کر آنے والے وقتوں میں 1 سال میں 2 سال کے اندر وہ ایک تناور درخت بنے گا، پھر اس کے اوپر پھل لگیں گے۔ پھل جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اس کا حاصل ہے جس کے لیے وہ پودا لگایا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے آج جو آپ کرم کر رہے ہیں، آج جو آپ اچھا یا برا عمل کر رہے ہیں، آج جو آپ اچھی یا بری سوچ رہے ہیں، آج جو آپ اچھی یا بری نیت بنا رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے آج آپ کے سامنے نہ آئے، کل بھی نہ آئے، مہینے کے بعد نہ آئے، سال کے بعد آ جائے، 2 سالوں کے بعد آ جائے۔ دیکھیں یہ پلٹ کے تو آنا ہے۔ کرما کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ اس فضا میں، انسانوں کے معاشرے میں چھوڑو گے، وہ چیز پلٹ کے آپ کی طرف آئے گی۔ دیکھو اسلامی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ آپ کے وہ اعمال ہیں جو آپ نے دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے، یہی اعمال آپ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ایز یو سو شیل یو ریپ، جو آج آپ کوئی چیز بوتے ہو وہی کل کو آپ نے کاٹنی ہے۔ ہم پچھلے ہمارے ایک جو پروگرامز تھے وہ بچوں اور والدین کی تربیت کے حوالے سے تھے۔ والدین جو ہیں وہ جس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں گے، ان کے نیگیٹو جو اعمال ہیں یا منفی جو ان کے افعال ہیں ان کے اوپر آنکھیں بند کرتے رہیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ جو بچہ پروڈکٹ بنے گی وہ ایک کرمنل کی شکل میں سامنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کے کرما کا کارما ہوگا، جو وہ کرم اس کے والدین کرتے رہے ہیں اس کے نتائج بچے کی شکل میں ان کو بھی بھگتنا پڑیں گے اور اس بچے کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی جو کارما ہوتا ہے وہ ایک دن کے اندر اس کا رزلٹ سامنے نہیں آنا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، اور خواب کیا آیا کہ یہ ستارے ہیں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست خواب ہے کہ آپ بادشاہ بنائے جاؤ گے کسی وقت کے اندر، اور کتنا عرصہ لگا تھا ان کو بادشاہ بننے میں۔ कब जाके मिस्र के अंदर वो सारे उनके भाई आते हैं और वो सारा कुछ होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी हर अच्छी और बुरी सोच मुआशरे के ऊपर एक असर छोड़ रही है। आपका हर अच्छा या बुरा कहा हुआ जुमला मुआशरे के ऊपर असर छोड़ रहा है। देखो, आप किसी को गाली देते हो, गाली भी एक लफ्ज है, लेकिन उस लफ्ज के नतीजे में अगला जो दूसरा शख्स इस गाली को सुन रहा है उसकी आंखों में आग क्यों आ जाती है, उसकी कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, वो आग बगोला हो जाता है और उसका खून ऐसे गर्दिश कर रहा है कि वो उसको कच्चा चबा जाए। लफ्ज क्या था? एक लफ्ज था, गाली की शक्ल में थी। और यही हम जो हकीमाना जुमले बोलते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर आज मैं बड़ा ना डाउन फील कर रहा हूँ तो आपके साथ में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, मेरा ये मसला है, हम चार पांच जुमले बोलते हैं, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो जुमलों के अंदर क्या ऐसी तासीर है कि मैंने उनको कोई डोज नहीं दी, मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है, कुछ जुमले हैं, जुमले वो सुन रहे हैं जो उनकी शख्सियत के ऊपर असर छोड़ रहे हैं। देखो, ये जितने भी दरबार होते हैं, ये जहाँ जहाँ लोग जाके अपनी रूह को तस्कीन देना चाहते हैं, उनको वहाँ पे तस्कीन क्यों मिलती है? क्योंकि वो जो इलाका है, हदू दरबा है, जहाँ पे हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे हर वक्त कुरान पाक की तिलावत हो रही है, और जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत होती है, अहादीस का मफहूम है कि वहाँ पे फरिश्तों की आमद रफ्त जारी और सारी होती है। और वहाँ पे क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे जाके आप जब दुआ मांगेंगे तो वो जल्दी कबूल हो जाएगी, तो उसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप कहीं और मांगेंगे तो कबूल नहीं होगी। बुनियादी तौर पर जहां मैं इस वक्त बैठा हूं, इस जगह का ऑरा कुछ और है, इस जगह का इन्वायरमेंट कुछ और है, ठीक है। और अगर मैं किसी मस्जिद में बैठकर या किसी दरबार में बैठकर, वो जगह जहाँ पे हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वहां पर जाकर जब मैं दुआ मांगूंगा, अहदीस कहती है फरिश्ते आमदरफ्त जारी और सारी रहती है, तो अल्टीमेटली मेरे वो जो लफ्ज हैं जो शायद किसी और माहौल में जब मैं बोलूंगा तो उतनी तेजी से वहां तक ना पहुंचे जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो जगह की जो तहारत, पाकीजगी और वहां की जो रूहानियत है वो मेरे लफ्जों के लिए रास्ते को आसान कर देती है, ठीक है। जो के फासला मैं एक घोड़े पे बैठ के मैं तय कर रहा था, वो मैं जहाज पे बैठ के फिर तय करना शुरू कर दूं। तो इस तरह से जहां जहां अच्छी बातें होंगी, अच्छे लफ्ज होंगे, वहाँ वहाँ के माहौल के अंदर जो एनर्जी होगी वो वहाँ पे जाके आप कुछ और फील करो। अब देखो, जैसे ही मस्जिद में दाखिल होते हैं तो क्यों आपके ऊपर एक हिसार में आप आ जाते हैं, जब तक आप वहाँ पे बैठे रहते हैं आपका चेहरे के अंदर एक उजलापन हमें क्यों नजर आता है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी ऐसी औलिया के मज़ार पे आप चले जाते हो, आप उमरा करने चले जाते हो, या कोई भी मुकद्दस मुकामात के ऊपर आप जाते हो, तो आपके वो कैफियत क्यों आ रही है? तो वो जिस माहौल के अंदर आप दाखिल हो रहे हो, जो इनविजिबल है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे वेव्स हैं, वहां पे लेयर्स हैं, जो के इनविजिबल दीवारें हैं, आप उन दीवारों को, दहलीजों को फलांगते हुए आगे जा रहे हो और उस जगह का माहौल आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें सर्दी महसूस नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी को रोकने वाला वहां पे कोई ऐसी दीवारें हैं नहीं, तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो रूह का सफर है, जो रूह की दुनिया है, जो नज़र तो नहीं आती चीज़ें, लेकिन वो मौजूद होती हैं, और वो आज आप जो आप दुनिया से जा चुके हैं, आप उनको जब जिस शिद्दत से याद करते हैं, वो उतनी शिद्दत से एक या दो दिन के अंदर ख्वाबों में आके आपसे मुलाकात करेंगे। ये मेरे सामने भी सुन रहे हैं, मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ये करके देखें। आपके वालिदैन हैं, दुनिया से चले गए हैं, एक लम्हा ऐसा आया है कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपकी सैलरी लेट दे रहे हैं, तो आप इस दुख के अंदर बैठे हुए हो, काश आज मेरे अब्बू जिंदा होते या वालिदैन होते तो मेरे सर पे हाथ रखते और बला बला, और इसी हालत में रोते हुए आप सो जाते हो, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी वो जो रूह है वो जाके कनेक्ट करेगी उन लोगों के साथ, और वो ख्वाब में आके आपकी ढारस भी बंधाएंगे और आपको बताएंगे भी भाई ये जो मसला है इसको ऐसे ऐसे कर लो, आपको मुशावरत भी देंगे। तो जिस तरीके से ये दुनिया नफ्स की दुनिया है, जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, ऐसे ही एक अनफस की दुनिया है। अनफस की दुनिया वो है जहाँ जो रूह की दुनिया है, मटेरियल दुनिया साइंस की दुनिया है। साइंस का मतलब, साइंस हमेशा जो चीज़ें नज़र आती हैं उनके ऊपर यकीन रखती है, लेकिन जो मेटाफिजिकल दुनिया है, खुदा मेटाफिजिकल है, कोई फिजिकल शेप में तो हमारे पास नहीं है, हम कहते हैं हमारे कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, कोई फिजिकल शेप में तो नजर नहीं आ रहे। हम कहते हैं जन्नत है दोजख है, कोई फिजिकल शेप में तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हैं, वो रूह की दुनिया के अंदर हैं। हम सोते हैं, हमारी रूह ख्वाब के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ रही होती है। हम ख्वाब में डर रहे होते हैं, हम ख्वाब में बाज़ुकात रो रहे होते हैं, आंखें खोलते हैं तो आंसू होते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि चीज ख्वाब में आपके साथ हो रही होती है, लेकिन वो जो ख्वाब है वो ख्वाब नहीं है, वो एक दुनिया है जिस दुनिया के अंदर आप सोकर ही पहुंच सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो नींद होती है ना, ये आधी मौत होती है। आधी मौत का मतलब क्या है कि आप सो जाते हो तो आपके जिस्म से रूह, अल्लाह कुरान में कहता है कि वो कौन है जो सोते में तुम्हारी रूह को निकाल कर फिर वापस तुम्हारे जिस्म में डाल देता है। तो आप ना जाने कहाँ कहाँ से घूम फिर के, बाज़ुकात आप जा रहे होते हैं, आप एक मंजर देखते हैं, आपको लगता है कि यार ये मंजर तो मैंने पहले ही देखा हुआ है, ये सारा कुछ तो मेरे पास पहले ही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। लाइक मेरे साथ काफी दफा ये हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे पता था कि मेरी राइट साइड पे कोई रेड़ी खड़ी होगी, ठीक है, तो मैंने ऐसे देखा तो वहां पे खड़ी थी, अचानक से एक बाइक आके यहाँ पे खड़ी होगी, मूंछों वाला बंदा बैठा होगा। अब वो ये वो मंजर था जो के रिवाइज हो रहा है, जो पहले हो चुका है, लेकिन मेरे लिए वो फिजिकली फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कहाँ हो चुका है? आप कहीं सोए थे, आपकी रूह जिस्म से निकली है,
1: सबकॉन्शियस,
2: वो सारा कुछ जो आने वाले चंद दिनों में आपके साथ होना था वो चीजें वहां पे हो चुकी, और आपको ये लगा कि हैं ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो असल में जिस तरीके से साइंस जो है ना, ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड को निगलेक्ट नहीं करती है, साइंस ये कहती है क्योंकि हम इसका तजिया नहीं कर सकते कि जन्नत है या दोजख नहीं है, क्योंकि साइंस हमेशा उन चीजों के ऊपर तजुर्बा कर सकती है जो नजर आती है, जो नजर नहीं आती साइंस कहती है वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। सही और गलत का फैसला हम उसके ऊपर तजुर्बात करके कर सकते हैं, जो कि हम तजुर्बा कर नहीं सकते, लिहाजा साइंस भी मेटाफिजिकल वर्ल्ड को इंडोर्स करती है।
1: सर आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, आपके साथ प्रोग्राम करने की शायद ये खूबसूरती है कि दिल नहीं चाहता ब्रेक लेने का, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 using Unity.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कार्मा के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, और कि हम जो बीज बोते हैं उसी का ही दरख्त निकलता है। सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब हम ये बात करते हैं कि हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, फिर हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ बुरा हो रहा हो तो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा किया था, तो अल्टीमेट रिजल्ट अब उसका बच्चा ये बात भुगत रहा है। लेकिन अगर हम इस्लाम की तरफ जाएं, तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कुरान पाक में लिखा है कि हम किसी का बदला किसी को नहीं देते। लाइक अगर आप बुरा कर रहे हो तो आप ही भुगत के जाओगे, तो फिर उस बच्चे के साथ कैसे बुरा हो सकता है? या ये कोई थ्योरी है कि अगर आपने कुछ बुरा किया तो आपका आगे आने वाली कोई जनरेशन उससे सफर करे?
2: देखो, किसी के साथ अच्छा या बुरा होने की डेफिनेशन, समटाइम्स हम ये समझ रहे हैं कि फलां बंदे के साथ यार बहुत बुरा हो गया, ये हमें उसको नजर आ रहा है कि यार ये बुरा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस बुराई के पीछे या जिसको हम बुरा कह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चोर जो है वो कहे आज मैंने चोरी के लिए निकलना है, और जब वो रात को चोरी करने के लिए निकले और जब जिस घर में चोरी करनी थी उसकी दीवार फलांगने लगा तो उसकी टांग टूट गई। ठीक है, अब जो टांग का टूटना है, हम ये कहेंगे यार इसके साथ तो बड़ा बुरा होगा, इसकी टांग टूट गई, लेकिन उसको जिस काम से बचाया गया है वो ये था कि वो किसी घर में चोरी करने जा रहा था। ठीक है,
1: अब
2: वो
1: जो
2: किसी का नुकसान हो रहा था, अब ये है कि उस गुनाह से बचाने के लिए, अब ये जो आपको आजमाइश कह लो इसको आप, या उसके ऊपर ये जो उफ्ताद पड़ी है, इस उफ्ताद को आप ये कह लो कि ये इसके ऊपर अजाब है अल्लाह का, ये अल्लाह की रहमत है। ठीक है, अब कुछ देखेंगे जाहरन तो आप ये कह रहे हो कि यार ये तो अल्लाह का अजाब आ गया, इसकी टांग टूट गई है, लेकिन ये जो इसके ऊपर उफ्ताद आई है बेशकल रहमत आई कि अल्लाह ने इसको उस काम से बचाया जिस काम की वजह से वो अगलों का जो नुकसान होना था। देखो, दुनिया के अंदर हकूकुल इबाद भी हैं और हकूक अल्लाह भी हैं। अल्लाह के जो हकूक हैं, अल्लाह ताला कादर मुतलिक है, हर चीज़ पे कादर है, वो कुदरत रखता है कि अपने सारे हकूक को माफ़ कर दे। ठीक है, लेकिन जो आबाद के हकूक हैं, जो इंसानों के हकूक हैं, ये जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप जन्नत में जा ही नहीं सकते हो, आप फलाह पा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए जो इंसानों के, जैसे इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ठीक है, तो असल में ये देखना कि फलां बंदे के साथ जो बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, ये इसकी औलाद या इसके वालदैन के करतूतों का नतीजा है जो औलाद के ऊपर ये उफ्ताद पड़ रही है। देखो, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, वेरी करता है इंसिडेंट टू इंसिडेंट, कि वाकईतन वालदैन ने कुछ जुराइम किए हैं, वालदैन ने खुदा ना खास्ता किसी से उनका कत्ल जो है वो सरजद हो गया है और पूरी उम्र के लिए बच्चे के ऊपर ये ताना लग गया कि ये एक कातिल की औलाद है, और दुनिया ने उसको भी उस नज़र से देखना शुरू कर दिया कि ये एक कातिल की औलाद है, इससे बच के रहना चाहिए। अब ये जो चीज़ है, ये अब हमें ये लग रहा है कि यार बच्चे को इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्योंकि बच्चा मुआशरे के सामने जवाबदेह नहीं है, मुआशरा उसको जो मर्जी कहता रहे कि ये कातिल का बच्चा है, ये फलां है, ये फलां है, मैं इससे कारोबार नहीं करूंगा, इससे हुक्का पानी बंद कर दो, जैसे हमारे होता है। लेकिन जिसने असल में सजा और जजा देनी है वो मैं और आप तो नहीं है, वो ये मुआशरा तो नहीं है, वो तो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह कहता है कि मैं किसी के साथ बेइंसाफी करता भी नहीं हूँ, बल्कि वो तो अपने फजल से आपको बख्शिश अता करता है। ठीक है, वो कहता है जे देखा मैं अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो जे देखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। तो बात यह है कि हम जिसको ये कह रहे होते हैं कि ये इसके साथ बुरा हो रहा है, वो हमारी फिक्र के दायरे में उसकी डेफिनेशन बुराई है या अजाब है या आजमाइश है या उफ्ताद है। ठीक है, लेकिन जिसके सामने उसमें जवाबदेह होना है, देखो ये कहते हैं कि कभी भी किसी को ये मत कहो कि तुम बख्शे नहीं जाओगे, और किसी के बारे में ये कहना कि ये जन्नती है या दोजखी है या अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला कयामत के दिन होना है। और आज वो जो हमको बुरा लग रहा है, हो सकता है मरने से पहले जिसको हम आज इस दुनिया में कांटा समझ रहे हैं, वो अल्लाह के हाँ या अल्लाह की बारगाह में वो फूल हो, और जिसको हम यहाँ पे फूल का दर्जा दे के बैठे हुए हैं, हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में एक कांटा हो। ठीक है, तो इसलिए ये हम फैसला नहीं कर सकते कि यार किसका जो हुआ ये बुरा हुआ है, हम ये हम दुनियावी तनाजुर में देख रहे हैं कि यार दुनिया में हमें ये नज़र आ रहा है कि उसके साथ ये हो गया है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है, टांग चली गई है, बाजू चला गया है, सर फट गया, बला बला बला। लेकिन असल में सही या गलत, किसके साथ होना है किसके साथ नहीं होना है, ये फैसला कयामत के दिन होना है रोज़े महशर के अंदर। हो सकता है जिसको यहाँ पे हमने ये समझा कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसी के बदले में उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो, और जिसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि यार इसके साथ। अच्छा, हम किसको यहाँ पे कामयाब कहते हैं? मतलब हमारा जो वर्ल्ड व्यू है कामयाबी का, वो क्या है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, आगे पीछे पता नहीं क्या कुछ लेके लोग बैठे हुए हैं, और आते जाते मुझे पास शोहरत भी है, दौलत भी है, ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, मादी है। लेकिन कुरान तो इस कामयाबी को तो कामयाबी नहीं कहता। वहां पे तो जो अल्लाह कहता जो फलाह पा गया वो कामयाब है, जिसने ना पाई वो नाकाम है। तो देखना ये है कि अगर तो इस दुनिया के तनाजुर में हमने फैसला करना है कि इसके साथ बुरा हुआ है, तो दुनिया के तनाजुर में वो बुरा ही होगा, लेकिन क्या हकीकत में भी वो बुरा है, इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते।
1: सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कार्मा क्या है, उसकी डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें भी। अब और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है और यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और उन्होंने भी कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो आज बहुत सी नई चीज़ें सीखी, उस वर्ड की डेफिनेशन सीखी जिसको शायद मैं किसी और पर्सपेक्टिव से देखती थी, या जहाँ मुझे भी ये लगता था कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो मैंने कुछ बुरा किया, मैंने कभी उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आएंगे, किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Fasten your seatbelts.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं परिंदों के लिए ठिकाना है सैलाब में रुकावट बनते हैं ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: बोरियत को भगा दो।

सुरोर्तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Fasten your seatbelt.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM 92.6।